0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
0: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।